0: खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धुली तन भरई, खने खने दसन छटा छूट हास, खने खने अधर अगे करु बास, चौकी चले खने खने चलु मंद, मनमथ पाठ पहिला अनुबंध, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खनियाचर दाए खनी होई भोर।
1: শুনছেন রেডিও বাংলা নেট.কম, বাংলার গান বাঙালির প্রাণ।

0: खने खने अधर अगे करु बास, चौकी चले खने खने चलु मंद, मनमथ पाठ पहिला अनुबंध, हृदय मुकुल हिरी हिरी थोर, खनियाचर दाए खनी हुए भोर।
1: শুনছেন রেডিও বাংলা নেট ডট কম, বাংলার গান বাঙালির প্রাণ।

0: पास खने खने अधर आगे करो बास चौकी चले खने खने चलू मंद मनमथ पाठ पहला अनुबंध हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर खनि अचर दाए खनी हुए भोर
1: শুনছেন রেডিও বাংলা নেট ডট কম বাংলার গান বাঙালির প্রাণ।